0: वो देख वो क्या है,
1: पंछी है क्या?
0: ना रे पगले, प्लेन।
2: अरे देख अंडरवेयर बाहर है, सुपरमैन।
0: ना, दैट इज बाबा जी।
3: बाबा जी की जय हो।

कर दीजिए। यहाँ अमीर गरीब में कोई भेद नहीं है। बाबा के सीधे प्रसारण में रुकावट तो है, मगर रुकावट के लिए